0: तूफान भालो आशीष
1: हजूर घोड़े का तबीयत खराब नहीं बहुत रोज है आपका सवारी नहीं मिला ये दिल खराब
0: दाना ठीक पाच्छे तो
1: जी हाँ हजूर